مگر ناصر یہ دعویٰ ہے میں نازا تو نہیں فن پر مگر ناصر

تازگی کا سفر طے کیجیے یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے FM 92.6.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: नंबर वन रेडियो स्टेशन FM 92.6 UCP की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद एफएम 92.6।

0: और उनमें उनके अपने अपने स्टेक्स क्या थे और उनके फिर वॉयलेंट एक्ट्स क्या थे. बिफोर आई डूइंग मोर डिस्कशन ऑन दैट वी हैव टू गो फॉर अ म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फिर हम दोबारा शुरू करते हैं.
1: स्टे ट्यून्ड.

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: We are back again with our discussion on the book Ice Candy Man by Bapsi Sidhwa. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पारसी पर्सपेक्टिव की, कि कैसे जो स्टोरी है वो हमें एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देती है, एक पारसी कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव हमें मिलता है अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि मेजरली वो स्टेक होल्डर्स नहीं थे इस सारी सिचुएशन में. तो उनका पर्सपेक्टिव और वो जिस अप्रोच उन्होंने यूज़ की, एम्प्लॉय की उस टाइम पे उस सिचुएशन में, तो वो क्या थी, उसमें हमें कुछ ना कुछ रेफरेंसेस भी किताब से मिलते हैं. सो देयर इज दिस कर्नल पर्सन, कर्नल ब्रूचा, इज अ नाइस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पारसी कम्युनिटी. उनका आपस में एक डिस्कशन चल रहा है उनकी अपनी कम्युनिटी में कि व्हाट आर दे गोइंग टू डू इन दिस सिचुएशन. तो उसमें फिर इवेंचुअली उनकी आपस में थोड़ी सी बहस मुबहसा चलता है, बट यहाँ पे हमें आके फाइनल उनका जो एक मिलता है कि वो उनका स्टांस क्या होगा, वो यही होता है दैट ही सेज के जो भी इस जगह पे जहाँ पे हम रहते हैं लाहौर में, जो भी इस लैंड को रूल करना चाहता है, जस्ट बी इट, और हम किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस शो नहीं करेंगे, ना ही हम किसी किस्म की कोई साइड लेंगे. आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम द बुक, वहाँ पे दैट पर्सन कर्नल बरूचा सेज, वी व्हेन व्हेन ही काइंड ऑफ रिवाइव्स और रिकॉल्स हिज हिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज पीपल, दैट व्हेन वी वर किक्ड आउट ऑफ पर्शिया बाय द अरब्स 13 इयर्स अगो, व्हाट डिड वी डू, डिड वी शाउट और आर्ग्यू, नो, roars the colonel and hastily provides his own answer before anyone can interrupt. We got into boats and sailed to India. Furthermore, bhi aage hum agar isme dekhe to page number 39 pe he says that let whoever wishes rule, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, we will abide by the rules of their land. And he further says, as long as we do not interfere, we have nothing to fear. As long as we respect the customs of our rulers, as we always have, we will be all right. So again, he gives a very reasonable and a very practical approach ki hame kya approach join karni chahiye, aur wahi cheez unhone practice bhi ki during partition, ki unhone kisi ki side nahi li, rather they were neutral and they were friendly with religious affiliation.
4: Because I think because they were in minority, they knew that they were out of the race.
3: True.
4: वो तो नहीं आ सकते, और जैसे उसने कहा कि अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो फिर फ्रिक्शन होगी,
3: कि अगर हम किसी भी किस्म की कोई वो करते हैं तो हम उसमें ऐसे ही रगड़े जाएंगे, और इवेंचुअली उनका कोई स्टेक होल्डर है ही नहीं, क्योंकि उनको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों का पता है कि उनकी एज सच वो स्ट्रेंथ में तो है ही नहीं, ना ही वो एक मेजोरिटी में है, तो उनको

0: They were looking at each other like humans.
1: Humans, exactly.
0: Like ordinary people.
1: क्योंकि अभी तक वो जो political spectrum में बातें चल रही थी, जो leaders की बातें हो रही थी, दरमियान में speeches हो रही हैं, वो बहुत हद तक बस उसी spectrum में थी. As such, वो लोगों की grassroots level पे वो narratives उस तरह से influence नहीं कर रहे थे, ना ही पहुंच रहे थे.
0: So when politics intersected with the personal
1: Gradually,
0: life,
1: yes.
0: their ideology, तो वो सारी चीजें ही change हो
1: रही हैं. आहिस्ता आहिस्ता change होती हैं कि उनकी वही बातें कि वो जो then the private did not remain private any longer, it became a political thing. तो वो intersectionality हमें नजर आती है private और public spheres की with the passage of time, जैसे जैसे वो narrative building strengthen होती जा रही है, political friction बढ़ती जा रही है.
0: And the fact that they were not only aware of their own identity, they were more aware of the identity of the next person. और वो identity सिर्फ एक चीज पे stand करती है, वो था religion. If he is a Hindu, he is the enemy.
1: Gradually,
0: if he is a
1: yes.
0: Muslim, he is an enemy. If person standing in front of them is a Muslim, then he is a friend. So sab kuch friends hain, enemies hain, unki baat kar jo bhi darumadar hai sirf ek cheez pe tha, wo tha religion. To kitna extremism pe wo cheez chalegi, and if something reaches to that point, तो इट विल कॉज chaos.
1: और वो फिर हमें chaos नजर भी आते हैं कि जब एक बिल्कुल वही बात है कि वो जो narratives हैं बहुत extremist situation पे चले गए. जैसे ही स्टोरी में हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें वही मसले मसाइल नज़र आने लगते हैं. हम एक और हमें इसमें वाक्या भी मिलता है जहाँ पे लेनी जो है बच्ची, वो अपने जो कुक होता है उसके घर काम करता है इमाम दीन, उसके साथ पीर पिंडो एक गांव है जो कि फिर बाद में इंडिया में चला गया, लेकिन वहाँ पे सिख और मुस्लिम इकट्ठे रह रहे हैं. तो हमें उस गाँव में प्री पार्टीशन यही सिचुएशन मिलती है कि वो दोनों लोग यही बातें करते हैं कि यू नो ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की बातें हैं और उनकी बस ऑरेटरी है, रेटरिक है उनका, ये चीजें हमारी तक कभी भी नहीं पहुंचेंगी. इवन दे ऑल्सो से कि सिर्फ शहरी लोगों की बातें हैं, ये गाँव में नहीं पहुंचेंगी और हम हमेशा एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहेंगे हिंदू और मुस्लिम्स. बट इन द लास्ट चैप्टर्स और इन द सेकंड हाफ ऑफ द बुक वी गेट टू सी के वहां पे फिर क्या क्या क्या बुरा हुआ और उन्होंने कैसे उन्हीं लोगों ने जो एक दूसरे के दोस्त हैं उन्होंने एक दूसरे को कैसे मारा.
0: आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट बैप्टिस्ट सिद्वा हियर कि कितने सटल तरीके से उन्होंने डिफरेंसेस बताए हैं कि अच्छा पॉलिटिक्स कितनी डिफरेंट है आम लोगों से, तो पॉलिटिशियन की बातें सिर्फ वहां तक हैं. फिर ये भी बताना कि शहरी लोगों के रहन सहन में अप्रोच में बहुत फर्क है, हम गाँव के हैं, वी आर क्लोजर टू ईच अदर, हम वो सारी चीजें नहीं करेंगे. लेकिन द सैड पार्ट इज कि वो ऐसा नहीं मेंटेन रख सके. वो जितनी करप्शन
1: Eventually, वो इन्फ्लुएंस आया ही वो आग जो शहरों से निकली वो और जो पार्लियामेंट्स और इस तरह की पॉलिटिकल लोकेल्स पे हुई वो कहीं ना कहीं उनके गांव में भी और गांव की गलियों में घरों में भी पहुंच ही गई.
0: एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वायलेंस वाज सो ह्यूज दैट आई डोंट थिंक अ ह्यूमन आई, इफ देयर इज एनी ह्यूमन आई, कैन बेयर टू विटनेस दैट. आप मंटो की कहानियाँ देखें, आप कृष्णचंद्र की कहानी देखें, आप नॉवल में भी पढ़ें, इतना ज़्यादा वायलेंस है दैट पीपल आर नॉट अफ्रेड ऑफ कटिंग द थ्रॉट्स ऑफ अदर पीपल, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ लाइटिंग them on fire, घर जला रहे हैं, लोगों को जला रहे हैं, लोग भाग रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा.
1: वापस आएंगे कि जैसे किताब में अगर देखें तो हम जैसे से बिटवीन द नैरेटिव पहुँचे हैं, हाफ किताब के करीब पहुँचते हैं, तो हम देखते हैं कि कैसे लोग अगैन वो जो उनके जो लीडर्स फॉलो कर रहे थे, जो रिलीजियस सिम्बल्स को जैसे वो पोलिटिकली यूज़ कर रहे थे, वो कैसे आम इंसान आम लोगों ने भी करना शुरू कर दिया. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुस्लिम्स जो थे तो उन्होंने अपने मुस्लिम लीडर की चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दिया, जुम्मा पढ़ना शुरू कर दिया, टोपियां पहनना शुरू कर दी, सुरमे लगाना शुरू कर दिए. ऑन दी अदर हैंड जो हिंदूज थे वो अपने उन लीडर्स को फॉलो कर रहे थे, क्योंकि अगेन वो जो रिलीजियस नैरेटिव था वो कैसे बिल्ड करता जा रहा था. यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगेन बुक की तरफ दोबारा जाऊँगी. ऑन पेज नंबर 93 इन द बुक वी सी एज नरेटेड बाय लेनी दैट गांधी, जिन्ना, नेहरू, इकबाल, तारा सिंह, Mount Patton are the names I hear, and I become aware of religious differences. It is sudden. One day everybody is themselves, and the next day they are Hindu, Muslim, Sikh, Christian. People shrink, dwindling into symbols. एंड अगेन इसी तरह से फिर वो मुस्लिम्स की बात करती है कि वो कैसे सुरमे पहने लगे, टोपियाँ पहने लगी. ऑन दी अदर हैंड आया जो है वो हिंदू होती है, क्योंकि तो वो अपने डिफरेंट गॉड्स और गॉडेसेस जो भी उनके देवी वगैरह होते हैं मंदिरों में जाके वो चढ़ावे चढ़ाने लग जाती है. एंड शी काइंड ऑफ सीक्स ट्राइज टू सीक प्रोटेक्शन इन देयर इन दोज आर्म्स एंड इन दोज चैरिटीज़. तो इस तरह की चीज़ें हमें मिलती हैं. और फिर ग्रेजुअली बिल्कुल जब हम तकरीबन मिडल ऑफ द नावल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि एक्चुअली द सिचुएशन हैज़ वर्सन्ड अप.

0: और अब ड्यूरिंग पार्टीशन हम वाले फेज में आ जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत शदीद किस्म के जो है ना वो वायलेंस हो रहा है, राइट्स हो रहे हैं, मॉब मेंटेलिटी इज गेटिंग जस्ट आउट ऑफ कंट्रोल. अच्छा फिर यहाँ पे क्या है कि लाहौर जैसे शहर में रहते हुए लोग सुन रहे हैं कि दिल्ली में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है, मुंबई में मुसलमानों के साथ ये हो रहा है. तो यहाँ पे जो लाहौर में रहने वाले मुस्लिम्स थे, अपॉन हियरिंग दोज न्यूज़ एंड नैरेटिव्स व्हाट दे देन स्टार्ट टू डू, दे एक्चुअली अगेन स्टार्ट डैमेजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ हिंदूज हिंदूज देयर. वहाँ पे आयशा वो हमने इंसिडेंट भी देखे हैं जैसे डिस्कस किया था शालमी वाला.
1: When the ice candy man, he takes that ayah with him and he shows her that how the houses were burning and the people, the Hindus, they were running everywhere and he was not feeling anything. वो उसको एक celebration के तौर पे देखते हैं, तमाम कहते हैं ये तमाशा है
0: और तुम सब देखो
1: देखो.
0: और वो फिर वो इकट्ठे होते हैं वहीं पे एक जगह पे घर के छत पे, आयश कैंडी मैन के घर के छत पे वो एक साथ जाते हैं. वो लेनी और आया को लेके जाता है और वहाँ पे वो दिखाते हैं कि वो शालमी है बिकॉज दैट वॉज देन एरिया ऑफ हिंदू पॉपुलेशन.
1: तो वहाँ दिस इज अ वेरी मिजरेबल कंडीशन टू बी इन दैट यू एज अ ह्यूमन आर नॉट एबल टू फील एनीथिंग फॉर द पीपल हु आर बर्निंग टू डेथ अलाइव. Rather, you are calling it tamasha.
0: Yeah.
1: Or
0: that is actually the insensitivity, na? No. Insensitivity that is also happening here. Like, abhi hum Gaza wali situation bhi dekhe, to hum apni mobiles mein reels dekh rahe hain, videos dekh rahe hain, what is happening there. We are, but kind of, bas phir hum scroll down karke niche chale jaate hain. We don't do anything about it.
1: It's so, like when you give certain people, certain nations, certain communities, certain identities, you strip off the basic humanity or human value from those people. तो बाकी जितना भी सारी दुनिया है वो डिसेंसिटाइज हो जाती है, इट डज नॉट अफेक्ट देम व्हाटएवर इज हैपनिंग टू द अदर पीपल. तो यही चीज यहाँ पर इनके साथ होगी. लेकिन एक और जो चीज है जो मुझे लगता है बैप्टिस्ट सिद्धा ने हमारे लिए छोड़ दी है, दैट इज द क्वेश्चन ऑफ रिलीजन. कि जहाँ पर रिलीजन एक थ्रेट भी था, वहां पर पीपल वर फाइंडिंग peace or some solace in religion as well. For example, the people who were changing their religion, jo Christian the ya wo Hindu ban jate the, jo Hindu the wo Muslim ban jate the.
0: Ab jaise wo you know political spectrum mein religion ko use kiya ja raha hai,
1: so everybody was using
0: that. Aur isi tarah se jo personal level pe bhi hum dekhte hain, to log kahin na kahin jaise untouchable shudar caste se jo Hindus the, to wo they were converting into Christianity or they were turning into Muslims. Wo apni puri identity change kar rahe the, uske sath रिचुअल्स थे उनको फॉलो कर रहे थे, कलमा सीख रहे थे. तो एक हमें आगे जाके चैप्टर्स में नजर आते हैं दैट देयर वाज दिस माली नेम्ड मोती, वो भी अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेता है. और फिर हरी है तो वो बन जाता है हिम्मत अली, ठीक है, और वो वैसी टोपी पहने लग जाता है, सुरमा लगाने लग जाता है. तो कुछ लोग उसमें रिफ्यूज ढूंढ रहे थे. इवन आया जब वो चढ़ावे चढ़ाती है तो शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू आस्क हेल्प फ्रॉम हर गॉड्स कि उसको जो है ना वो रेस्क्यू करे इस सिचुएशन से. ऑन दी अदर हैंड मुस्लिम्स को देखें तो वो अपनी उन चीजों को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करें. फिर हम ये पेज नंबर 137 पे आते हैं, तो यू नो शालमी मार्केट और शालम मार्केट से तुम सारे ही वाकिफ है लाहौर में. तो वहां पे हमें पता चलता है कि इट वाज अ लोकेलिटी ऑफ हिंदू कम्युनिटी व्हिच वाज बर्नड बाय मुस्लिम्स एंड देन हाउ दे एक्चुअली एग्रीवेटेड द सिचुएशन के उसमें उनको बजाय कि वो पानी से उसको बुझाते तो जो रेस्क्यू की हेल्प भी आई तो दे एक्चुअली दे वाज टैंक्स ऑफ पेट्रोल दैट अगेन. वो वहां पे आपको ये भी नजर आता है कि हाउ कुड humans commit such bestiality and a wildness in the name of religion. तो कहीं ना कहीं आप question करने लग जाते कि इंसान जो है इतना intellectual और intelligent being है और हम हमेशा से celebrate करते हैं इस चीज़ को western philosophy में भी और generally religious narratives maybe.
1: And the thing that shakes you questioned to your core is the fact that every act of brutality was preceded by that slogans of Allahu Akbar.
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल. जहाँ पे एक और बिल्कुल मुझे आपने याद कराया, एक और वाक्य आता है कि वो वहाँ पे दो मुस्लिम्स मॉब्स हैं, वो दो जीप्स लेके आते हैं और एक हिंदू उनको मिल जाता है वहाँ पे. पहले वो उसको मारते हैं और फिर वो उसकी एक टांग एक जीप से बांधते हैं, दूसरी टांग दूसरी जीप से बांधते हैं. अगर मैं उसका कोट भी कर पाऊँ तो खैर वो कोट करना भी बहुत मुश्किल होगा, बट या दिस इज ऑन द पेज नंबर 135 in the book. तो फिर वो और फिर उसकी पूरी बॉडी को टियर कर देते हैं बिकॉज दे यू नो ड्राइव दोज जीप्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो वहाँ पे और फिर वो सेलिब्रेट करते हैं एंड वेन दे स्टार्ट देयर जीप्स दे से अल्लाह अकबर. सो यू नो द ब्लाइंडनेस दैट इज देयर वो आपको नजर आती है कि वो अनक्रिटिकली यूज करे हैं उन नेरेटिव को. तो बहुत ही इस तरह के काफी सारे आपको इसमें वाक्यात मिलते हैं बुक में जो कि आपको हिला के रख देते हैं. मंटो भी पढ़ो, ठंडा गोश्त पढ़ते हैं अगर आप कहानी पढ़े. इसके अलावा और भी
1: कृष्ण चंद्र की एक स्टोरी है द लेटर फ्रॉम अ प्रोस्टिट्यूट, लेटर फ्रॉम अ प्रोस्टिट्यूट. उसमें भी एक सेम इंसिडेंट वो कोट करती है कि एक मुस्लिम गर्ल है बतूल, शी वॉज अ पठान गर्ल. तो उसके बाप को पहले जो हिंदू मॉब है वो मारता है. दे गाउजेज आउट हिज आईज, दे कट ओपन हिज एब्डोमेन एंड दे टेक आउट ऑल द एंट्रल्स एंड दे पुट इट आउट ऑन द ग्राउंड एंड देन दे रेप ऑल ऑफ द वुमेन ऑफ द हाउस वन बाय वन. सो द एक्ट ऑफ ब्रुटैलिटी that protagonist or that narrator or that prostitute, she questions everything. She says that I have read Islam and whatever they are doing is not Islam. This is Satanism. This is callousness. This is cowardice. ये वो सारी चीजें ये कहीं पर भी कोई भी religion वो नहीं सिखाता है.
0: Exactly. और उसमें जब हम मंटो की एक और कहानी पढ़ते हैं वो खोल दो, उसमें यही है कि वो मुस्लिम गर्ल होती है, उसको बचाने के लिए वो मुस्लिम लड़के जाते हैं but they eventually they keep on raping her for so many days. और जब उसके बाप को पता चलता है just loses his consciousness. तो वो सिर्फ ये भी नहीं था कि सिर्फ हिंदूज हिंदूज के अगेंस्ट थे या
1: मुस्लिम्स भी,
0: बल्कि वो जहाँ पे उनको अपनी वो वाइल्डनेस को निकालना था, वो अपनी डेस्परेशन को एक्सरसाइज करना था, वो इन नैरेटिव्स में बना लेके वो भी चीज को एक्सरसाइज कर रहे थे. So this is all which happens actually in the middle of this entire novel. फिर आगे जाके हमें ये भी पता चलता है कि जो friends थे, जैसे एक मैम मैंने जिक्र किया कि वो जो before partition वो different लोग हैं. एक मैसूर है वो मुसलमान है, आया हिंदू है, आइस कैंडी मैन भी मुसलमान है. लेकिन दोनों आइस कैंडी मैन और मैसूर जो होता है दे बोथ ऑफ देम आर एडमायरर्स ऑफ आया, उन दोनों को वो पसंद होती है. अब ड्यूरिंग पार्टीशन फिर हमें देखने को मिलता है कि वो जो उनकी वो जो आइस कैंडी मैन लेकिन जेलस होता है उनकी क्लोजनेस से आया और मैसूर की. तो फिर आगे जाके हम देखते हैं तकरीबन पेज नंबर 175 पे कि हमें पता चलता है कि मैसूर की भी डेथ हो गई है और उसकी भी एक लाश मिलती है एक जगह से. और हालांकि वो मुस्लिम था और वो लाहौर में मारा गया, लेकिन हमें हिडन मीनिंग्स में ये पता चलता है कि वो एक्चुअली वो आइस कैंडी मैन ने उसको अपनी उस दुश्मनी के बेस पे मार दिया. हालांकि he was a Muslim, he was not
1: so nothing good can out of negative emotions.
0: Exactly. और उसमें फिर वही था कि उसको अपने पर्सनल जो ग्रजेस थे ना वो भी उन पॉलिटिकल उनके उस पर करके तो वो उनको पूरा कर रहे थे. उसके बाद हम आ जाते हैं तकरीबन चैप्टर नंबर 23 से चैप्टर नंबर 32 पे. हमारे पास लास्ट फेज नज़र आ जाता है विच इज़ आफ्टर पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन लाहौर. एंड देर आर ओनली मुस्लिम्स इन लाहौर नाउ. देर आर नो सिक्स, नो ब्राह्मिन्स. में बुक में भी कोट होता है मल्होत्राज हैव गॉन एंड दी सिख यू नो सिक्स आर गॉन एंड ओनली देर आर दिस लैनी का जो घर है और उसमें जो पारसी लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं और बस उनकी आया लेकिन अभी तक उनके साथ. तो इसमें ये होता है इसके उसको फिर हम मज़ीद आगे जिक्र करेंगे और डिस्कस करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिस्कशन ऑन द बुक.

0: 6, बोरियत को भगा दो।
1: Assalamu alaikum, and then me and my friend Aisha are again back with our last phase of our discussion on this book, Ice Candy Man. जैसे हम आगे post partition वाले phase में चले जाते हैं किताब में, तो हम देखते हैं कि वो again कैसे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं. And a very important incident happens afterwards कि जहाँ पे this Muslim mob mentality has kind of aggravated और वो हर जगह जा रहे हैं और जो non Muslims हैं उनको ढूंढ ढूंढ के मार मार के निकाल रहे हैं. तो they also come to Lenny's house और उनको वहाँ पे पता होता है कि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज के लोग काम करते हैं, तो उन सबका पूछते हैं, तो उसमें से कोई मुसलमान हो चुका है, कोई क्रिश्चियन हो चुका है, तो वो बच जाते हैं. एंड दे ऑल्सो यू नो लुक फॉर द प्रूफ एज वेल. इस तरह के थोड़े इंसिडेंट्स हमें मंटो की स्टोरीज में भी मिलते हैं. बट देन दिस आइस कैंडी मैन, हिज फेस इमर्जेस आउट ऑफ दैट मॉब, और वो फिर आके जो है ना वो पूछते हैं कि वो हिंदू औरत जो तुम लोगों के घर काम करती थी वो कायम आया की बात करते हैं. तो इमाम दीन, हु इज मुस्लिम कुक हु वर्क्स इन एट द हाउस ऑफ लेनी, ही काइंड ऑफ कन्फ्रंट्स द मॉब और वो कहते हैं कि नहीं वो जा चुकी है, ही लाइज बिकॉज आया इज स्टिल वर्किंग देयर. तो वो आया को बचाने के लिए झूठ बोलता है और उनको कहते हैं कि नहीं वो तो जा चुकी है, अपनी फैमिली के पास चली गई है. बट आइस कैंडी मैन नोज दैट शी इज स्टिल देयर, एंड व्हाट ही डज इज, जो कि वो आखिरी एक चीज़ करता है जो कि बहुत ही ब्रूटल है, वो आता है लेनी के पास और उसको बच्चे के तौर पे यू नो बहला के कोक्स करके वो पूछता है कि मुझे पता है कि आया इधर ही है, तो व्हाई डोंट यू टेल मी.
2: द फैक्ट दैट ही प्लेस विद द माइंड ऑफ दैट लिटिल चाइल्ड, वो कहता है मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें पता है,
1: और कहता है आई विल प्रोटेक्ट हर विद माई ओन लाइफ, तो प्लीज टेल मी. और वो बच्ची because she also has been affiliated with him
2: and
1: for a longer time,
2: and she used to witness his affection for her,
1: affection hai unki ek intimacy hai, to wo uski wajah se wo trust kar deti hai aur wo usko bata deti hai that she is either on the roof or in the godown of the house. Aur phir wo sare aur wo phir wo you know wahan se hi uska rang badal jata hai pura, wahi jo ice candy man wali humne baat ki thi.
2: It's like the ice candy man and the cook, they are like the foil characters. One Muslim is trying to protect the Aya, and the other Muslim is running after her. He is after her life just because she is a Hindu.
1: बिल्कुल. और आइस और बैप्टिस्ट सिद्वा ने ये भी चीज़ दिखाई कि सब मुस्लिम्स ही खराब नहीं थे, बल्कि देयर वर पीपल लाइक इमाम दीन हु वर सेविंग द पीपल ऑफ अदर रिलीजियस और प्रोटेक्टिंग द पीपल ऑफ अदर रिलीजियस आइडेंटिटीज. और फिर वहाँ पे यू नो लेनी काइंड ऑफ देन इवेंचुअली रियलाइजेस हिज मिस्टेक कि उसने जो है ना आया को, शी सेज दैट आई हैव बिट्रेड आया. और फिर वो पूरा जो है वो फिर जो मॉब है वो उनके घर घुस जाता है, उनके सारे कमरे खोल खोल के देखता है, वहाँ से देन दे फाइनली रिकवर आया एंड देन दे ड्रैग हर सो ब्रूटली और वो उसको कार्ट में ले डाल के लेके चले जाते हैं. एंड द काइंड ऑफ देम व्हेन दे वर ड्रैगिंग हर बॉडी दे वर अगेन ट्राइंग टू इम्पोज
2: देमसेल्व्स
1: फिजिकली ऑन हर एज वेल. तो वहाँ पे वो जो उनकी एक वो सेक्सुअल बीस्टियालिटी है वो भी हमें नज़र आती है दैट दे वर डूइंग. और फिर वो उसको ले जाते हैं, उसके बाद बहुत अरसा आया उनको नज़र नहीं आती. एंड यू नो देर आर अदर कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर्स इन द बुक एज वेल, गॉड मदर एंड इलेक्ट्रिक आंट और इस तरह के थोड़े यू नो डिफरेंट वियर्ड नेम्स हैं जो कि पारसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. दे कीप ऑन लुकिंग फॉर आया, उसको रिकवर करने की पूरी कोशिश करते हैं बट नहीं मिलती. बट फाइनली शी गेट्स काइंड ऑफ उनको कहीं पता चल जाता है क्योंकि यू नो गॉड मदर की नेटवर्क बड़ी स्ट्रांग होती है. और फिर वहाँ से वो फिर उनको पता चलता है कि वो उसने फिर जब साथ ही आइस कैंडी मैन का भी पता चलता है कि आइस कैंडी मैन इवेंचुअली उसको ले गया था एंड ही फोर्सफुली मेड हर मुस्लिम एंड शी नेम्ड हर ही नेम्ड हर मुमताज. और फिर उस मुमताज के साथ वो निकाह भी कर लेता है लेकिन इवेंचुअली वो उसको बेच भी देता है, कोठे पर बिठा देता है. और फिर वहाँ पर उसके साथ जो भी अब्यूज होता है वो एक अलग कहानी है.
2: द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ राइटर्स हैव टॉक्ड अबाउट इट, हाउ वुमेन दे वर फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन
1: एज अ
2: partition, they were abducted, they were raped, they were violated and they were sold in the bazaars.
1: Yes, and that too happened because wo hum zikr bhi karte hain ek act ka jo ke baad mein aaya tha, Pakistani jo bhi territory thi wahan pe Hindu khawateen ko aur Sikh khawateen ko
2: they were exchanging their prisoners or the people.
1: Lekin pehle unko you know agwa kiya gaya, unko mara gaya, theek hai. On the other hand wahan pe you know Hindu territory mein aur Indian territory mein Muslim khawateen ke sath is tarah hua. But after partition there came an act, government ne kaha ki ji apni apni jo hai na unko khawateen ko جو ہے واپس بھیجیں یا پرزنرس کو واپس بھیجیں. تو پھر وہاں سے یہاں پہ جو مسلم خواتین واپس آئیں ان کو ان کی فیملیز نے ایکسیپٹ نہیں کیا.
2: تراجڈی
1: ان کی اپنی فیملیز نے ان کو اون نہیں کیا, واپس نہیں لیا. اور پھر دین دیز ویمن ور کالڈ فالن ویمن اینڈ دین ایونچولی دے ہیڈ ٹو گو ان ٹو پرزنز, آئیدر پرزنز اور آئیدر ان یو نو جیسے آپ کے پاس دارالامان یا اس طرح کی کچھ جگہ ہوتے, یا پھر وہ پروسٹیٹیوشن میں چلی گئیں.
2: اور سو دے ور لائک ڈبلی ڈسپلیسڈ,
1: ڈبل ٹرپل آئی ڈونٹ نو, ڈبلی مارجنلائز, اور جتنی بھی ہم اس پہ کر سکیں لیئرز ہیں بہت زیادہ ان کی آپریشن کی. تو وہ سب انہوں نے فیس کی اور اینڈ ایٹ دی اینڈ پھر ہمیں آیا کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مل جاتی ہے اور جو آئس کینڈی مین کو اس کی باڈی تو مل جاتی ہے, وہ اس کو یو نو اس سے شادی بھی کر لیتا ہے اور پھر اس کو پھر وہ یوز بھی کرتا ہے, اس کو کوٹھے پہ بٹھا دیتا ہے, بٹ وہ ہی نیور گیٹس ٹو ارن ہر ریسپیکٹ from her, وہ ownership, وہ love, affection, intimacy اس کو کبھی بھی نہیں ملتی. اور وہ اس کے پیار میں اپیرنٹلی ہوتا ہے, بٹ دس از ناٹ لو ایکچولی, بٹ وہ اس کو پیار کا نام دیتا ہے, وہ شاعر بن جاتا ہے اس کے پیچھے. اور پھر ایونچولی آیا کو وہ گاڈ مدر ریکور کروا کے اس کی فیملی کے پاس واپس امرتسر بھیج دیتی ہیں, اور جو ہے وہ آئس کینڈی مین اس کے پیچھے بارڈر میں ہی کہیں لاسٹ ہو جاتا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ دی ویری اینڈنگ آف دس ناول ناؤ دیٹ I am told at last Aya has gone to her family in Amritsar and Ice Candy Man too disappears across the Wagah border into India. So that was all about today's novel jisme humne bahut sare I think perspectives ko discuss kiya, but hamara zyada focus
2: time nahi tha to hum usme details mein nahi ja sake because the novel is laden with so many layers, so many things that we can talk about. You can talk about Lahore,
1: so many incidents,
2: yeah, so many things, so many themes, which are loss of innocence ho, betrayal ho, brutality ho, ya phir partition ke time ka trauma ho, aap feminist perspective se dekhe, post colonialism se dekhe, Foucault ki theory ke through dekhe, there are different lenses.
1: But this book is very good to read. اور اگین ہماری ریکمنڈیشن بھی اس کو پڑھیں, بیپسی دو پاسٹ اوے لاسٹ ایئر, تو بٹ ہر ورک ول آلویز ریمین اے ویری وڈ آلویز ریمین یو نو پلے اے ویری پیوٹل رول وین اٹ کمز ٹو ریڈنگ پاکستانی لٹریچر ان انگلش. سو دیٹ واز آل فرام آور سائڈ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو اس. اللہ حافظ.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dil mein.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ke dhanyan.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

जब भारत के बड़े बड़े मौसीकारों ने खान साहब को कॉपी करना शुरू किया तो बिलाआखिर वो खुद मैदान में उतर आए। माइकल ब्रूक के साथ कामयाब तजुर्बात के बाद रेमिक्स म्यूजिक स्टार बाली सागू के साथ भी फ्यूजन किया, जिसने बिजनेस के रिकॉर्ड कायम किए।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: when you are off.
1: Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

0: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
1: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
2: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان یوسیپی

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: Assalamu alaikum. This is Amna Naeem, a lecturer from the Faculty of Languages and Literature, UCP. Aaj again maine ek aur book select ki hai, that is Ice Candy Man by Babsidwa, and I am going to discuss this book with my friend and colleague Miss Aisha Khan, who is also a lecturer in the Faculty of Languages and Literature. The reason behind selecting this particular work and novel is that it's a story about the 1947 partition of the subcontinent and how the narrative that is there and the situations that are there that have been narrated by Babsidwa, they're still kind of relevant in the contemporary situation of Pakistan. Kyunki wahi jo hamare religious differences badh gaye the back in that time, 1947 mein, aur jiski wajah se phir Hindu Muslim fasadat hue, these communities killed each other, they went against each other, wahi cheeze kahin na kahin aggravate kar चुकी हैं आज की सिचुएशन में ही भी, और वो कहीं वो नेशनैलिटीज़ या नेशंस से निकल के, कौमियत से निकल के, वो बहुत हद तक परमिएट कर गया है आपके एथनिक फैब्रिक पे भी। आप बिल्कुल देख सकते हैं अपने अराउंड, यहाँ पे बहुत और भी बहुत सारी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं, इसी तरह से और भी हम बहुत जगह पे फेस कर रहे हैं इस तरह के इशूज़। सो दिस वर्क इज़ वेरी रेलिवेंट इन टूडेज़ टाइम्स एज वेल। And before again delving deep into the discussion on this book, I would like Miss Aisha to take the initiative to talk about the importance of again this book, and also on the importance of the very title of this book. So yes, over to you, Miss Aisha.
3: Thank you so much, Miss Amna Naeem. Hello everybody. So why there is a shift in the academia towards partition literature in today's time, this is an important thing. Agar hum apne ird gird dekhein aaj duniya mein kya ho raha hai, what is happening in Palestine, what is happening in Gaza, people are going through the same trauma, separation, the sort of chaos that we have in the world today, chahe wo Syria ho, wo Congo ho, jahan par bhi aap dekhein ethnic rights hain, conflict hai, separation hai, anxiety hai, trauma hai, the displacement that the people are going through, the feeling of uprooting, leaving back your homes, जहाँ से आपकी identity निकलती है, तो वो सारी चीज़ें आज भी दुनिया में बहुत ज़्यादा हो रही हैं। And the fact that we have come so far from partition now in today's world, लेकिन अगर हम अपने issues को देखें, analyze करें, तो हमें पता चलेगा that the issues are the same. We have not come out of that religious extremist mindset, वो sectarianism, सारी चीज़ें अभी भी वैसी की वैसी हैं. So it is very important for us to talk about the basic issues, because until and unless we talk about them, we realize ke masla actually mein kidhar hai.
2: To usko resolve nahi kar sakte. To read these books. So again, ye jo hum aaj book talk kar rahe hain, this is also an initiative of the reading circle of Faculty of Languages and Literature. तो हम आज फिर अगेन इस किताब के थ्रू भी यही बात करेंगे, हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अगेन गेट बैक टू लिटरेचर, रीडिंग योर बुक्स, अपने आसपास एक्सप्लोर करें, आपके आसपास ये लाहौर जैसे शहर में इतने सारे राइटर्स प्रोड्यूस हुए जिन्होंने इन सब इश्यूज़ की बात की, क्योंकि जब फिर हम उनकी वर्क्स पढ़ते हैं, उनके अल्फाज पढ़ते हैं, उनकी किताबें पढ़ते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो सेंसिबिलिटीज़ और वो जो क्रिटिकल लेंस है वो डिवेलप होता है, एंड बाय डिवेलपिंग दैट दोज सेंसिबिलिटीज़ वी कैन एक्चुअली स्ट्राइव at least towards making a better future for our own country, for our nation.
3: Because this is the purpose of history. If we have not learned from our history, we are not going to make our future better. So through these books, hum sensitivity apne andar develop kar sakte hain, sensibility develop kar sakte hain, taki hum dekh sakenge kaun si aisi cheeze hain jo ki hum ek loop mein चलती आ रही हैं, एंड वी आर डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, एंड वी कैन नॉट एक्सपेक्ट सम चेंज if we are repeating the same mistakes again.
2: और वो जो violence के जो cycles हैं वो चलते आए और हमने वही देखने कि वो शुरू कहाँ से होते हैं. This book actually helps us, you know, learn about के वो जो आग थी वो ignite कहाँ से हुई. ठीक है कि यहाँ पे जो communities, अगर हम अपनी खुद history देखें, संस्कृति history या Indus civilization है, तो उसमें हम देखते हैं कि you know the communities were living together in harmony with each other. ठीक है, that was the situation before the arrival of these you know British people. ठीक है, of course एक you know कहीं ना कहीं frictions तो होती हैं, you know बहुत सारे different राजा महाराजा थे और उनकी अपनी छोटी छोटी you know बादशाहतें थी और उनके आपस में वो कहीं ना कहीं वो लैंड के लिए और पावर के लिए लड़ाइयाँ तो रहती थी, बट फिर भी देर वॉज दिस हारमनी बिटवीन द यू नो पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस अफिलिएशंस. में हम अगर थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन यू नो ज़्यादा हिस्ट्री को डिग इन करें तो ब्राह्मिन्स में भी यू नो इस तरह की सिचुएशंस रही हैं कि वो यू नो इमाम हुसैन और इमाम अली को यू नो फॉलो करते हैं. आज भी उनके कुछ इस तरह के रिचुअल्स हैं जो मुहर्रम के दिनों में वो फॉलो करते हैं. हम भी उनकी यू नो होली और दिवाली को रिस्पेक्ट करते थे. इसी तरह से यू नो वो भी हमारी ईद वगैरह में यू नो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के इवेंट्स को रिस्पेक्ट करते थे, हम उनको मिल के मनाते थे. एटलीस्ट इस तरह की लड़ाई नहीं थी, लेकिन ये शुरू तभी हुई जब ये सारा 1947 का में सिचुएशन शुरू हुई एंड व्हेन एक्चुअली दिस ब्रिटिश पीपल एक्चुअली ट्राइड टू यू नो रिड्यूस पीपल इनटू रिलीजियस सिंबल्स इनटू देयर रिलीजियस आइडेंटिटीज. और फिर वहाँ पे फिर हम एक दूसरे से कितने ज़्यादा दूर होते गए और वही चीज़ें आज मज़ीद एग्रेवेट होती जा रही हैं कि विदिन इवन द यू नो इस्लामिक ट्रेडिशन है जो मुस्लिम कम्युनिटी, हमारे पास बहुत सारे जो है ना सेक्शंस बन गए हैं और उनमें शदीद किस्म की फ्रिक्शन आ गई है जो कि अब बहुत हद तक ब्लडशेड की तरफ भी जाती जा रही है.
3: आई गेस द ब्यूटी ऑफ द नॉवल लाइज इन द फैक्ट दैट बापू सिद्धा इज गिविंग अस डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एज वेल. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द डिफरेंसेस वी शुड लुक एट द फैक्ट दैट व्हाट वर द थिंग्स दैट मेड अस लिव इन दैट हारमोनियस और वेरी पीसफुल एटमोसफियर वेयर देयर वर हिंदू सिख्स क्रिश्चियंस मुस्लिम्स एंड इवन पारसीज एज well they knew that they belonged to different religions but they were living in complete harmony with they were other. respectful of each other's religious identities. So don't you think it's a very bleak thing that humans have been reduced to this like a small dot of religious identities and religious symbols? Where is the humanity?
2: That is the questions that kind of arise in one's mind when you read these texts or this novel. हम थोड़ा सा अगेन जाएंगे अगेन टाइटल की सिग्निफिकेंस पे कि वो आइस कैंडी मैन क्यों है, इसका टाइटल, उसकी अपनी सिग्निफिकेंस क्या है. तो अगर हम उसके बारे में बात करें तो वो यही है कि इट्स बेसिकली द आइस कैंडी मैन इज़ द वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स इन द नॉवल एंड उसकी जो पर्सनालिटी है वो प्री पार्टीशन ड्यूरिंग पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन कैसे चेंज होती है. ही इज़ कॉल्ड आइस कैंडी मैन बिकॉज ही सेल्स दीज पॉप्सिकल्स आइस पॉप्सिकल्स टू लिटिल किड्स इन अ पार्क. ही इज़ अ मुस्लिम यंग मैन. द टाइटल इज ऑल्सो सजेस्टिव कि वो कैसे आइस कैंडी मैन पहले पार्टीशन में कैसे एक सॉलिड फॉर्म में होता है, आइस की फॉर्म में होता है. आइस इन दिस नॉट इन द टर्म्स ऑफ यू नो कोल्डनेस बट ऑल्सो इन द टर्म्स ऑफ कि वो स्ट्रांग होता है. ही इज अ स्ट्रांग फ्रेंड ऑफ डिफरेंट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज. वो एक हिंदू आया है, उसके साथ भी उसकी एक कहीं ना कहीं पसंद की यू नो पसंदीदगी है. इसके अलावा और भी बहुत यू नो बीच में कुछ हिंदू भी हैं, सिख्स भी हैं, पारसी एक बच्ची है जो कि नरेटर है स्टोरी की, उसका भी वो दोस्त है, उसको वो फ्री पॉप्सिकल्स देता है. तो वो यू नो एक अच्छा दोस्त है, एक स्ट्रांग दोस्त है. तो उसकी एज अ पर्सन एज अ फ्रेंड वो उसकी स्ट्रेंथ को भी यू नो रिफ्लेक्ट करता है. बट वेन वी सी के जो ऐसी जैसी नरेटिव यू नो जाता है पार्टीशन की तरफ, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जो हीट ऑफ दैट पार्टीशन, वो जो हीट ऑफ पोलिटिकल chaos that started to happen, वो उस हीट की वजह से कैसे फिर melt हो जाता है, liquid form में हो जाता है, liquidify हो जाता है, और फिर उस liquid में आते आते कैसे वो you know फिर वो इतना ज़्यादा लिक्विडिफाई हो जाता है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है. और वो फिर वो उस हीट से कितने लोगों को नुकसान पहुंचाता है, कितने वो मॉब्स को लीड करता है, और उन मॉब्स के थ्रू वो कितनी यू नो हिंदूज़ को, हिंदू कम्युनिटीज़ को, सिख कम्युनिटीज़ को नुकसान पहुंचाता है. और फिर ग्रेजुअली बाय द एंड ऑफ द नॉवल व्हेन वी आर इन द स्टेज ऑफ पोस्ट पार्टीशन ईयर्स, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि उसका वो कैसे ग्रेजुअली यू नो अपनी बिकॉज ही गेट्स कंज्यूम्ड बाय हिज रिलीजियस religious identity and that
3: and the hatred, madness.
2: The madness, the hatred that got ignited during the situation of partition, वो कैसे aggravate होती जाती है और वो उसी से consume होते होते कैसे eventually evaporate हो जाते
3: हैं. And I guess this is the same thing that a lot of writers who wrote about and during partition, like Manto or Krishan Chandra, they have talked about this fact that whatever was happening during partition in the name of religion was not religious at all. It wasn't something that the religions used to preach and still preach. It was something that the people wanted to do. It was pure Satanism. As if the madness in them was unleashed.
2: वो जो एक इंसान के अंदर एक madness होती है, craze होता है, insanity, wild side जो होती है ना, वो कैसे निकल के आती है? They use these political narratives, but again वो कहीं ना कहीं उनमें पनाह लेने की कोशिश करते हैं, but actually वो खुद अपने आप में जो है ना वो बहुत ज़्यादा wild होते हैं. वो उनकी और उनकी wild side कैसे निकल के आती है वो हमें पता चलता है और कैसे निकल के आई सब community के.
3: We have been listening to the fact that nothing is apolitical. So these writings actually show us what happens when you politicize religion.
2: हाँ,
3: बिल्कुल. आप रिलीजन को पॉलिटिसाइज कर देते हैं एंड व्हेन पॉलिटिक्स एंटर योर माइंड एंड योर आइडियोलॉजी इज पॉलिटिसाइज्ड, आपके डोमेस्टिक स्फीयर में वो एंटर हो जाती है, आपकी सारी बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती है. सो इफ दिस इज द ओनली लेंस थ्रू विच यू आर लुकिंग एट द थिंग्स, देन दिस इज द एंड यू आर गोइंग टू मीट, द एंड ऑफ आइस कैंडी मैन एंड द एंड ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल, बी देम हिंदू, सिक्स, एसाईज और मुस्लिम्स, ऑल सफर्ड. Each and everybody suffered.
2: और वो जो उनकी दोस्तियां थी वो कैसे कितनी यू नो शदीद किस्म की दुश्मनी में बदल जाती हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे. इसके अलावा और भी बहुत सारी राइटिंग्स हैं. हमने मंटो अगर हम पढ़ें तो उसमें बहुत सारी ये इसी किस्म की कहानियां हैं. तो वी ऑल्सो काइंड ऑफ सी दैट मंटोएस्क टेस्ट एंड अप्रोच इन द नैरेटिव स्टाइल ऑफ वापसी सिद्वा इन दिस नॉवल. तो शी वॉज एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यू नो मंटोज राइटिंग्स. और साथ ही हम और भी कुछ राइटर्स की बात करें तो उनकी भी उसमें हमें यू नो एक फ्लेवर मिलता है. इसके अलावा हमारे पास काफ़ी सारी मूवीज़ आई हैं. ये खुद नॉवल जो है इस पर भी एक मूवी बनाई गई. आमिर खान इज़ आई थिंक प्लेइंग द रोल ऑफ आइस कैंडी मैन एंड द नेम ऑफ दैट मूवी इज अर्थ 1947 और एक और क्रैकिंग इंडिया भी इसका दूसरा टाइटल है. So anyways, again, now we will, without wasting, you know, any more time, we will get into the, you know, reading the novel. ये जो पूरा novel है, it consists of 32 chapters. और बिल्कुल जो शुरू के 8 से 10 chapters हैं, उसमें हम देखते हैं before partition situation क्या थी सब कॉन्टिनेंट की, स्पेसिफिकली लाहौर में सिचुएशन क्या थी, क्योंकि पूरा जो नावल है वो लाहौर में सिचुएटेड है. वारिस रोड और क्वींस रोड, जेल रोड, दिल्ली गेट, मोची गेट, शालमी, ये लोकेलिटीज हमें नजर आती हैं. इनका बहुत ज्यादा जिक्र नजर आता है.
3: वन ऑफ द ब्यूटीज ऑफ दिस नावल इज दैट फॉर एनी आउटसाइडर, फॉर एनी फॉरेनर, इफ दे विल रीड द नावल, दे विल गेट टू नो लाहौर.
2: दे कैन सी
3: लाहौर थ्रू द आईज ऑफ बापसी सिद्वा.
2: यस, थ्रू द आईज ऑफ दिस novel they could see and you know imagine the streets of Lahore, the society of Lahore. So agar aapko padhne ka bahut shauk hai Lahore ke bare mein bhi, so this book actually is a very good one for that matter. Acha shuru hum karenge, agar hum dekhe to narrator kaun hai kahani ka, wo hai hamare paas ek Parsi bachchi hai jo ki narrate kar rahi hai, jo ki kahani kissa bayan kar rahi hai jo uske aankhon ke samne hua. So ye jo Leni hai, she is a young girl, 7-8 saal ki ek bachchi hai, aur wo जो है ना वो एक पारसी घर में रहती है और उनके घर में बहुत सारे मुलाजिम हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज से बिलोंग करते हैं. यानी कि उसकी जो बच्ची की अपनी जो एक बेबी सीटर है, ये नैनी है, उसका नाम आया है, वो एक हिंदू लड़की है 16-17 साल की. इसके अलावा उसके घर में एक इमाम दीन कुक काम करता है जो कि एक यू नो एल्डरली एज का एक मुस्लिम आदमी है. इसके अलावा अब अपनी बेबी सीटर के साथ होता क्या है कि लैनी जो है वो रोज ही एक पार्क में जाती होती है, ठीक है, और उस पार्क का नाम भी क्वीन विक्टोरिया पार्क है. और वहाँ पे उस पार्क के अंदर एक्चुअली देयर इज दिस स्टैचू ऑफ क्वीन विक्टोरिया एज वेल, विच एक्चुअली इज सिम्बॉलिक ऑफ द ब्रिटिश राज इन द प्री पार्टीशन ईयर्स, कि कैसे लोग जो हैं वो अपनी जिंदगी ब्रिटिश राज के यू नो साए में गुजार रहे थे. और फिर लेकिन उनकी आपस में एफिलिएशंस बहुत अच्छी थी एंड दे ऑल वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. तो वो सेंटीमेंट्स, वो सिचुएशन, वो हमें उनकी कॉन्वर्सेशन में नजर आती है. लेकिन वो आपस में हिंदू, मुस्लिम, सिख Christians, वो सब आपस में जो है ना वो बड़े मिल के रहते थे.
3: As if they had only one enemy at that point.
2: Yes. That was actually the scene. तो वो चीज नजर आती है. There is another very beautiful thing. अगर हम इसको थोड़ा सा post colonial lens से देखें तो जो Baptist Sidwa है she is also kind of हमें बता रही है कि हमारे indigenous beauty standards जो है खवातीन को लेके वो कितने different हैं western standards से. तो वो उनको बल्कि celebrate करती है rather than looking down upon them. So that is actually a very good thing about these post-colonial writers कि वो अपने indigenous culture को beauty standards को और जो pre-violence situation थी उसको कैसे celebrate करते हैं. तो इस तरह की हमें चीज़ें हमें शुरू के chapters में मिलती हैं. और again overall अगर हम देखें तो इन chapters में बात हो रही है अगेन उनकी हारमनी बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू रिलीजियस सिचुएशन. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी गेट टू सी और रीड इन दिस नॉवल इज द अप्रोच एंड द परस्पेक्टिव ऑफ पारसी कम्युनिटी टूवर्ड्स दिस इंसिडेंट ऑफ 1947 पार्टीशन. क्योंकि ये पोलिटिकल सिचुएशन में तो ये बातें चल ही रही थी, ये डिबेट्स हो ही रही थी कि जी नेहरू और जिन्ना के आपस में डिफरेंसेस चल रहे हैं और फिर हिंदूज क्या कर रहे हैं मुस्लिम्स के अगेंस्ट और मुस्लिम्स क्या चाहते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. तो ये वाली सारी सिचुएशन हमें नजर आती है.
3: अच्छा, जब भी हमने हिस्ट्री को देखा है तो 1947 पार्टीशन की जब भी बात हुई है मोस्टली सारा जो फोकस है वो हिंदूज और मुस्लिम पर ही रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक इज द सिग्निफिकेंस दैट बापसी सिद्वा चोज अ पारसी गर्ल टू बी अ नैरेटर.
2: उसमें वही बात है कि वो अपना भी बिकॉज बापसी सिद्वा हरसेल्फ वाज अ पारसी तो वो अपना एक नैरेटिव भी बयान कर रही है, बयान करने की कोशिश कर रही है कि हम लोगों ने हमारे लोगों ने इस सिचुएशन को कैसे देखी. एंड शी ऑल्सो इज ट्राइंग टू वोकलाइज हर परस्पेक्टिव कि हम इस सारी सिचुएशन में कहाँ थे और फिर हमने क्या किया और क्या हम कर सकते थे और क्या हमने नहीं किया. बिकॉज
3: सो इज इट लाइक अ थर्ड पर्सन्स पर्सपेक्टिव हु इज वाचिंग एवरीथिंग ऑब्जेक्टिवली
2: एंड ट्राइंग टू गिव अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ऑन द थिंग्स कि हाउ द अदर पीपल वर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग टू दैट सिचुएशन और उनमें उनके अपने अपने स्टेक्स क्या थे और उनके फिर वायलेंट एक्ट्स क्या थे. बिफोर आई डूइंग मोर डिस्कशन ऑन दैट वी हैव टू गो फॉर अ म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद फिर हम दोबारा शुरू करते हैं.
3: स्टे ट्यून्ड.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: We are back again with our discussion on the book Ice Candy Man by Babsi Sidhwa. ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पारसी पर्सपेक्टिव की कि कैसे जो स्टोरी है वो हमें एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देती है, एक पारसी कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव हमें मिलता है अपॉन द सिचुएशन, क्योंकि मेजरली वो स्टेक होल्डर्स नहीं थे इस सारी सिचुएशन में. तो उनका पर्सपेक्टिव और वो जिस अप्रोच उन्होंने यूज़ की एम्प्लॉय की उस टाइम पे उस सिचुएशन में, तो वो क्या थी, उसमें हमें कुछ ना कुछ रेफरेंसेस भी किताब से मिलते हैं. सो देयर इज दिस कर्नल पर्सन, कर्नल ब्रूचा, इज अ नाइस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पारसी कम्युनिटी. उनका आपस में एक डिस्कशन चल रहा है उनकी अपनी कम्युनिटी में कि व्हाट आर दे गोइंग टू डू इन दिस सिचुएशन. तो उसमें फिर इवेंचुअली उनकी आपस में थोड़ी सी बहस मुबहसा चलता है, बट यहाँ पे हमें आके फाइनल उनका जो एक मिलता है कि वो उनका स्टांस क्या होगा, वो यही होता है दैट ही सेज के जो भी इस जगह पे जहाँ पे हम रहते हैं लाहौर में, जो भी इस लैंड को रूल करना चाहता है जस्ट बी इट, और हम किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस शो नहीं करेंगे, ना ही हम किसी किस्म की कोई साइड लेंगे. आई वुड लाइक टू कोट फ्रॉम द बुक. वहाँ पे दैट पर्सन कर्नल बरूचा सेज, वी व्हेन व्हेन ही काइंड ऑफ रिवाइव्स और रिकॉल्स हिज हिस्ट्री इन फ्रंट ऑफ हिज पीपल, दैट व्हेन वी वर किक्ड आउट ऑफ पर्शिया बाय द अरब्स 13 इयर्स अगो, व्हाट डिड वी डू, डिड वी शाउट और आर्ग्यू, नो, roars the colonel and hastily provides his own answer before anyone can interrupt. We got into boats and sailed to India. Furthermore, bhi aage hum agar isme dekhe to page number 39 pe he says that let whoever wishes rule, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, we will abide by the rules of their land. And he further says, as long as we do not interfere, we have nothing to fear. As long as we respect the customs of our rulers, as we always have, we will be all right. So again, he gives a very reasonable and a very practical approach कि हमें क्या approach join करनी चाहिए. और वही चीज़ उन्होंने practice भी की during partition, कि उन्होंने किसी की side नहीं ली, rather they were neutral and they were friendly with religious affiliation.
2: Because I think because they were in minority, they knew that they were out of the race.
1: True.
2: वो तो नहीं आ सकते. और जैसे उसने कहा कि अगर हम इंटरफेयर करेंगे तो फिर फ्रिक्शन होगी,
1: फ्रिक्शन होगी,
2: फिर वो विल हैव टू फियर समथिंग,
1: वी विल बी वाइप्ड आउट. ही आल्सो सेज दैट कि अगर हम किसी भी किस्म की कोई वो करते हैं तो हम उसमें ऐसे ही रगड़े जाएंगे. और इवेंचुअली उनका कोई स्टेक होल्डर है ही नहीं, क्योंकि उनको अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों का पता है कि उनकी एज सच वो स्ट्रेंथ में तो है ही नहीं, ना ही वो एक मेजोरिटी में है, तो उनको इस रेस में पड़ना ही नहीं चाहिए. सो दे वर यू नो प्लेइंग वेरी सेफली. And that was, I think, also the very, very, very practical approach. तो फिर हम चैप्टर्स में देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से चीज़ें, पहले कैसे वो सारे जो वो फ्रेंड्स हैं या वो जो वर्कर्स हैं, डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, हेल्पर्स हैं डिफरेंट घरों के, डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज़ के, वो कैसे वो पार्क में इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं एक दूसरे के साथ, उनके इवन के अफेयर्स भी हैं यू नो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में भी. सो थिंग्स आर वेरी ईजी बिटवीन ऑल ऑफ दी.
2: आई गेस द फैक्ट दैट दे वर नॉट मेड कॉन्शियस और अवेयर ऑफ देयर रिलीजियस आइडेंटिटी एट दैट पॉइंट इन टाइम, दे वर लुकिंग एट ईच अदर लाइक ह्यूमंस,
1: एग्जैक्टली
2: लाइक ऑर्डिनरी पीपल.
1: क्योंकि अभी तक वो जो पोलिटिकल स्पेक्ट्रम में बातें चल रही थी, जो लीडर्स की बातें हो रही थी दरमियान में, स्पीचेस हो रही हैं, वो बहुत हद तक बस उसी स्पेक्ट्रम में थी. एज सच वो लोगों की ग्रास रूट लेवल पे वो नैरेटिव्स उस तरह से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे थे, ना ही पहुंच रहे थे.
2: सो व्हेन पॉलिटिक्स इंटरसेक्टेड विद अ पर्सनल लाइफ, देयर आइडियोलॉजी, तो वो सारी चीजें ही चेंज होती,
1: आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती हैं. कि उनकी वही बात है कि वो जो देन द प्राइवेट डिड नॉट रिमेन प्राइवेट एनी लॉन्गर, इट बिकेम अ पॉलिटिकल थिंग. तो वो इंटरसेक्शनैलिटी हमें नज़र आती है प्राइवेट और पब्लिक स्फेयर्स की विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे वो नैरेटिव बिल्डिंग यू नो स्ट्रेंथन होती जा रही है, पॉलिटिकल फ्रिक्शन बढ़ती जा रही है.
2: एंड द फैक्ट दैट दे वर नॉट ओनली अवेयर ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी, दे वर मोर अवेयर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द नेक्स्ट पर्सन. और वो आइडेंटिटी हमारा दोस्त पे स्टैंड करती है, वो था रिलीजन. इफ ही इज अ हिंदू, ही इज द एनिमी. इफ ही इज अ मुस्लिम, ही इज एन एनिमी. इफ पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम इज अ मुस्लिम, देन ही इज अ फ्रेंड. सो सब कुछ फ्रेंड्स हैं, एनिमीज हैं, उनकी बात कर जो भी दारोमदार है सिर्फ एक चीज पे था, वो था रिलीजन. तो कितना एक्सट्रीमिज्म पे वो चीज चलेगी, एंड इफ समथिंग रीचेस टू दैट पॉइंट, तो इट विल कॉज कायोस.
1: कायोस. और वो फिर हमें कायोस नजर भी आते हैं कि जब एक बिल्कुल वही बात है कि वो जो नैरेटिव्स हैं बहुत एक्सट्रीमिस्ट सिचुएशन पे चले गए. جیسے ہی اسٹوری میں ہم آگے بڑھتے جاتے ہیں تو ہمیں وہی مسئلے مسائل نظر آنے لگتے ہیں. ہم ایک اور ہمیں اس میں واقعہ بھی ملتا ہے جہاں پہ لینی جو ہے بچی وہ اپنے جو کک ہوتا ہے اس کے گھر کام کرتا ہے امام دین, اس کے ساتھ پیر پنڈو ایک گاؤں ہے جو کہ پھر بعد میں انڈیا میں چلا گیا, لیکن وہاں پہ سکھ اور مسلم اکٹھے رہ رہے ہیں. تو ہمیں اس گاؤں میں پری پارٹیشن یہی سچویشن ملتی ہے کہ وہ دونوں لوگ یہی باتیں کرتے ہیں کہ یو نو یہ صرف

0: पर्सनल लेवल पे भी हम देखते हैं तो लोग कहीं ना कहीं जैसे अनटचेबल शूदर कास्ट से जो हिंदूज थे तो वो देवर कन्वर्टिंग इनटू क्रिश्चियनिटी और देवर टर्निंग इनटू मुस्लिम्स. वो अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर रहे थे, उसके साथ जो रिचुअल्स थे उनको फॉलो कर रहे थे, कलमा सीख रहे थे. तो एक हमें आगे जाके चैप्टर्स में नजर आते हैं दैट देयर वाज दिस माली नेम्ड मोती, वो भी अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर लेता है. और फिर हरी है तो वो बन जाता है हिम्मत अली, ठीक है, और वो वैसी टोपी पहने लग जाता है, सुरमा लगाने लग जाता. तो कुछ लोग उसमें रिफ्यूज ढूंढ रहे थे. इवन आया जब वो चढ़ावे चढ़ाती है तो शी इज ऑल्सो ट्राइंग टू आस्क हेल्प फ्रॉम हर गॉड्स कि उसको जो है ना वो रेस्क्यू करे इस सिचुएशन से. ऑन दी अदर हैंड मुस्लिम्स को देखें तो वो अपनी उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करें. फिर हम ये पेज नंबर 137 पे आते हैं तो यू नो शालमी मार्केट और शालम मार्केट से तुम सारे ही वाकिफ है लाहौर में. तो वहाँ पर हमें पता चलता है कि इट वॉज अ लोकेलिटी ऑफ हिंदू कम्युनिटी विच वॉज बर्नड बाई मुस्लिम्स एंड देन हाउ दे एक्चुअली एग्रीवेटेड द सिचुएशन के उसमें उनको बजाय कि वो पानी से उसको बुझाते तो जो रेस्क्यू की हेल्प भी आई तो दे एक्चुअली दे वॉज टैंक्स ऑफ पेट्रोल दैट अगेन. वो वहाँ पर आपको ये भी नजर आता है कि हाउ कुड humans commit such bestiality and a wildness in the name of religion. तो कहीं ना कहीं आप question करने लग जाते हैं कि इंसान जो है इतना intellectual और intelligent being है और हम हमेशा से celebrate करते हैं इस चीज़ को western philosophy में भी और generally religious narratives maybe.
1: And the thing that shakes you questioned to your core is the fact that every act of brutality was preceded by that slogans of Allahu Akbar.
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल. जहाँ पे एक और बिल्कुल मुझे आपने याद कराया, एक और वाक्य आता है कि वो वहाँ पे दो मुस्लिम्स मॉब्स हैं, वो दो जीप्स लेके आते हैं और एक हिंदू उनको मिल जाता है वहाँ पे. पहले वो उसको मारते हैं और फिर वो उसकी एक टांग एक जीप से बांधते हैं, दूसरी टांग दूसरी जीप से बांधते हैं. अगर मैं उसका कोट भी कर पाऊँ तो खैर वो कोट करना भी बहुत मुश्किल होगा, बट या दिस इज ऑन द पेज नंबर 135
1: इन द
0: बुक. तो फिर वो और फिर उसकी पूरी बॉडी को टियर कर देते हैं बिकॉज दे यू नो ड्राइव दोज जीप्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस. तो वहाँ पे और फिर वो सेलिब्रेट करते हैं एंड व्हेन दे स्टार्ट देयर जीप्स दे से अल्लाह हू अकबर. सो यू नो द ब्लाइंडनेस दैट इज देयर वो आपको नजर आती है कि वो अनक्रिटिकली यूज करे हैं उन नैरेटिव्स को. तो बहुत ही इस तरह के काफी सारे आपको इसमें वाक्यात मिलते हैं बुक में जो कि आपको हिला के रख देते हैं. मंटो भी पढ़ो, ठंडा गोश्त पढ़ते हैं अगर आप कहानी पढ़े. इसके अलावा और भी
1: कृष्णचंद्र की एक स्टोरी है द लेटर फ्रॉम अ प्रोस्टिट्यूट, लेटर फ्रॉम अ प्रोस्टिट्यूट. उसमें भी एक सेम इंसिडेंट वो कोट करती है कि एक मुस्लिम गर्ल है बतूल, शी वाज अ पठान गर्ल. तो उसके बाप को पहले जो हिंदू मॉब है वो मारता है. दे गाउजेज आउट हिज आईज, दे कट ओपन हिज एब्डोमेन एंड दे टेक आउट ऑल द एंट्रल्स एंड दे पुट इट आउट ऑन द ग्राउंड एंड देन दे रेप ऑल ऑफ द वुमेन ऑफ द हाउस वन बाय वन. सो द एक्ट ऑफ ब्रुटैलिटी that protagonist or that narrator or that prostitute, she questions everything. She says that I have read Islam and whatever they are doing is not Islam
0: yeah.
1: This is satanism. This is callousness. This is cowardice. ye wo sari cheeze hain ye kahin par bhi koi bhi religion wo nahi sikhata
0: hai. Exactly. Aur usme jab hum manto ki ek aur kahani padhte hain wo khol do usme yehi hai ki wo muslim girl hoti hai usko bachane ke liye wo muslim ladke jaate hain but they eventually they keep on raping her for so many days aur jab uske baap ko pata chalta hai he just loses his consciousness. तो वो सिर्फ ये भी नहीं था कि सिर्फ हिंदूज हिंदूज के अगेंस्ट थे या
1: मुस्लिम्स भी,
0: बल्कि वो जहाँ पे उनको अपनी वो वाइल्डनेस को निकालना था, वो अपनी डेस्परेशन को एक्सरसाइज करना था, वो इन नैरेटिव्स में बना ले के वो भी चीज को एक्सरसाइज कर रहे थे. So this is all which happens actually in the middle of this entire novel. फिर आगे जाके हमें ये भी पता चलता है कि जो friends थे, जैसे एक मैंने जिक्र किया कि वो जो before partition वो different लोग हैं. एक मैसूर है वो मुसलमान है, आया हिंदू है, आइस कैंडी मैन भी मुसलमान है. लेकिन दोनों आइस कैंडी मैन और मैसूर जो होता है दे बोथ ऑफ देम आर एडमायरर्स ऑफ आया. उन दोनों को वो पसंद होती है. अब ड्यूरिंग पार्टीशन फिर हमें देखने को मिलता है कि वो जो उनकी वो जो आइस कैंडी मैन लेकिन जेलस होता है उनकी क्लोजनेस से आया और मैसूर की. तो फिर आगे जाके हम देखते हैं तकरीबन पेज नंबर 175 पे कि हमें पता चलता है कि मैसूर की भी डेथ हो गई है और उसकी भी एक लाश मिलती है एक जगह से. और हालांकि वो मुस्लिम था और वो लाहौर में मारा गया, लेकिन हमें हिडन मीनिंग्स में ये पता चलता है कि वो एक्चुअली वो आइस कैंडी मैन ने उसको अपनी उस दुश्मनी के बेस पे मार दिया. हालांकि he was a Muslim, he was not
1: so nothing good can out of negative emotions.
0: Exactly. और उसमें फिर वही था कि उसको अपने पर्सनल जो ग्रजेस थे ना वो भी उन पॉलिटिकल उनके उस पर करके तो वो उनको पूरा कर रहे थे. उसके बाद हम आ जाते हैं तकरीबन चैप्टर नंबर 23 से चैप्टर नंबर 32 पे, हमारे पास लास्ट फेज नज़र आ जाता है विच इज़ आफ्टर पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन लाहौर, एंड देर आर ओनली मुस्लिम्स इन द इन द इन लाहौर नाउ, देर आर नो सिक्स नो ब्राह्मिन्स, में बुक में भी कोट होता है मल्होत्राज हैव गॉन एंड द सिख यू नो सिक्स आर गॉन एंड ओनली देर आर दिस लैनी का जो घर है और उसमें जो पारसी लोग रह रहे हैं वो रह रहे हैं और बस उनकी आया लेकिन अभी तक उनके साथ है. तो इसमें ये होता है इसके उसको फिर हम मज़ीद आगे जिक्र करेंगे और डिस्कस करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर डिस्कशन ऑन द बुक.

0: सिक्स बोरियत को भगा दो।
1: Assalamu alaikum, and then me and my friend Aisha are again back with our last phase of our discussion on this book, Ice Candy Man. जैसे हम आगे post partition वाले phase में चले जाते हैं किताब में, तो हम देखते हैं कि वो again कैसे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं. And a very important incident happens afterwards कि जहाँ पे जिस मुस्लिम मॉब मेंटालिटी has kind of aggravated और वो हर जगह जा रहे हैं और जो नॉन मुस्लिम हैं उनको ढूंढ ढूंढ के मार मार के निकाल रहे हैं, तो they also come to Lenny's house और उनको वहाँ पे पता होता है कि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटीज के लोग काम करते हैं, तो उन सबका पूछते हैं, तो उसमें से कोई मुसलमान हो चुका है कोई क्रिश्चियन हो चुका है, तो वो बच जाते हैं. एंड दे ऑल्सो यू नो लुक फॉर द प्रूफ एज वेल. इस तरह के थोड़े इंसिडेंट्स हमें मंटो की स्टोरीज में भी मिलते हैं. बट देन दिस आइस कैंडी मैन, हिज फेस इमर्जेस आउट ऑफ दैट मॉब और वो फिर आके जो है ना वो पूछते हैं कि वो हिंदू औरत जो तुम लोगों के घर काम करती थी वो कायम आया की बात करते हैं. तो इमाम दीन हु इज मुस्लिम कुक हु वर्क्स इन एट द हाउस ऑफ लेनी, ही काइंड ऑफ कन्फ्रंट्स द मॉब और वो कहते हैं कि नहीं वो जा चुकी है, ही लाइज बिकॉज आया इज स्टिल वर्किंग देयर. तो वो आया को बचाने के लिए झूठ बोलता है और उनको कहते हैं कि नहीं वो तो जा चुकी है अपनी फैमिली के पास चली गई है. बट आइस कैंडी मैन नोज दैट शी इज स्टिल देयर एंड व्हाट ही डज इज जो कि वो आखिरी एक चीज़ करता है जो कि बहुत ही ब्रूटल है, वो आता है लेनी के पास और उसको बच्चे के तौर पे यू नो बहला फुसला के कोक्स करके वो पूछता है कि मुझे पता है कि आया इधर ही है तो व्हाई डोंट यू टेल मी.
2: द फैक्ट दैट ही प्लेस विद द माइंड ऑफ दैट लिटिल चाइल्ड, वो कहता है मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें पता है
1: और कहता है आई विल प्रोटेक्ट हर विद माई ओन लाइफ, तो प्लीज टेल मी. और वो बच्ची because she also has been affiliated with him
2: and
1: for a longer time
2: and she used to witness his affection for her
1: affection hai unki ek intimacy hai to wo uski wajah se wo trust kar deti hai aur wo usko bata deti hai that she is either on the roof or in the godown of the house. Aur phir wo sare aur wo phir wo you know wahan se hi uska rang badal jata hai pura, wahi jo ice candy man wali humne baat ki thi.
2: It's like the ice candy man and the cook, they are like the foil characters. One Muslim is trying to protect the Aya and the other Muslim is running after her. He is after her life just because she is a Hindu.
1: बिल्कुल. और आइस और बैप्टिस्ट सिद्वा ने ये भी चीज़ दिखाई कि सब मुस्लिम्स ही खराब नहीं थे, बल्कि देयर वर पीपल लाइक इमाम दीन हु वर सेविंग द पीपल ऑफ अदर रिलीजियस और प्रोटेक्टिंग द पीपल ऑफ अदर रिलीजियस आइडेंटिटीज. और फिर वहाँ पे यू नो लेनी काइंड ऑफ देन इवेंचुअली रियलाइजेस हिज मिस्टेक कि उसने जो है ना आया को, शी सेज दैट आई हैव बिट्रेड आया. और फिर वो पूरा जो है वो फिर जो मॉब है वो उनके घर घुस जाता है, उनके सारे कमरे खोल खोल के देखता है, वहाँ से देन दे फाइनली रिकवर आया एंड देन दे ड्रैग हर सो ब्रूटली और वो उसको कार्ट में ले डाल के लेके चले जाते हैं. एंड द काइंड ऑफ द व्हेन दे वर ड्रैगिंग हर बॉडी दे वर अगेन ट्राइंग टू इम्पोज
2: देमसेल्व्स
1: फिजिकली ऑन हर एज वेल. तो वहाँ पे वो जो उनकी एक वो सेक्सुअल बीस्टियलिटी है वो भी हमें नजर आती है दैट दे वर डूइंग. और फिर वो उसको ले जाते हैं, उसके बाद बहुत अरसा आया उनको नजर नहीं आती. एंड यू नो देर आर अदर कैरेक्टर्स, इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर्स इन द बुक एज वेल, गॉड मदर एंड इलेक्ट्रिक आंट और इस तरह के थोड़े यू नो डिफरेंट वियर्ड नेम्स हैं जो कि पारसी फैमिली से बिलोंग करते हैं. दे कीप ऑन लुकिंग फॉर आया, उसको रिकवर करने की पूरी कोशिश करते हैं बट नहीं मिलती. बट फाइनली शी गेट्स काइंड ऑफ उनको कहीं पता चल जाता है क्योंकि यू नो गॉड मदर की नेटवर्क बड़ी स्ट्रांग होती है. और फिर वहाँ से वो फिर उनको पता चलता है कि वो उसने फिर जब साथ ही आइस कैंडी मैन का भी पता चलता है कि आइस कैंडी मैन इवेंचुअली उसको ले गया था एंड ही फोर्सफुली मेड हर मुस्लिम एंड शी नेम्ड हर ही नेम्ड हर मुमताज. और फिर उस मुमताज के साथ वो निकाह भी कर लेता है लेकिन इवेंचुअली वो उसको बेच भी देता है, कोठे पर बिठा देता है. और फिर वहाँ पर उसके साथ जो भी अब्यूज होता है वो एक अलग कहानी है.
2: द फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ राइटर्स हैव टॉक्ड अबाउट इट, हाउ वुमेन दे वर फोर्स्ड इनटू प्रोस्टिट्यूशन
1: एज अ
2: partition, they were abducted, they were raped, they were violated and they were sold in the bazaars.
1: Yes, and that too happened because wo hum zikr bhi karte hain ek act ka jo ke baad mein aaya tha, Pakistani jo bhi territory thi wahan pe Hindu khawateen ko aur Sikh khawateen ko,
2: they were exchanging their prisoners or the people.
1: Lekin pehle unko you know agwa kiya gaya, unko mara gaya, theek hai. On the other hand wahan pe you know Hindu territory mein aur Indian territory mein Muslim khawateen ke sath is tarah hua. But after partition there came an act, government ne kaha ki ji apni apni jo hai na unko khawateen ko جو ہے واپس بھیجیں یا پرزنرس کو واپس بھیجیں. تو پھر وہاں سے یہاں پہ جو مسلم خواتین واپس آئیں ان کو ان کی فیملیز نے ایکسیپٹ نہیں کیا.
2: تراجڈی
1: ان کی اپنی فیملیز نے ان کو اون نہیں کیا, واپس نہیں لیا. اور پھر دین دیز ویمن ور کالڈ فالن ویمن اینڈ دین ایونچولی دے ہیڈ ٹو گو ان ٹو پرزنز, آئیدر پرزنز اور آئیدر ان یو نو جیسے آپ کے پاس دارالامان یا اس طرح کی کچھ جگہ ہوتے, یا پھر وہ پروسٹیٹیوشن میں چلی گئیں.
2: اور سو دے ور لائک ڈبلی ڈسپلیسڈ,
1: ڈبل ٹرپل آئی ڈونٹ نو, ڈبلی مارجنلائز, اور جتنی بھی ہم اس پہ کر سکیں لیئرز ہیں بہت زیادہ ان کی آپریشن کی. تو وہ سب انہوں نے فیس کی اور اینڈ ایٹ دی اینڈ پھر ہمیں آیا کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مل جاتی ہے اور جو آئس کینڈی مین کو اس کی باڈی تو مل جاتی ہے, وہ اس کو یو نو اس سے شادی بھی کر لیتا ہے اور پھر اس کو پھر وہ یوز بھی کرتا ہے, اس کو کوٹھے پہ بٹھا دیتا ہے, بٹ وہ ہی نیور گیٹس ٹو ارن ہر ریسپیکٹ from her, وہ ownership, وہ love, affection, intimacy اس کو کبھی بھی نہیں ملتی. اور وہ اس کے پیار میں اپیرنٹلی ہوتا ہے بٹ دس از ناٹ لو ایکچولی, بٹ وہ اس کو پیار کا نام دیتا ہے, وہ شاعر بن جاتا ہے اس کے پیچھے. اور پھر ایونچولی آیا کو وہ گاڈ مدر ریکور کروا کے اس کی فیملی کے پاس واپس امرتسر بھیج دیتی ہیں, اور جو ہے وہ آئس کینڈی مین اس کے پیچھے بارڈر میں ہی کہیں لاسٹ ہو جاتا ہے. آئی ووڈ لائک ٹو کوٹ دی ویری اینڈنگ آف دس ناول ناؤ دیٹ I am told at last Aya has gone to her family in Amritsar and Ice Candy Man too disappears across the Wagah border into India. So that was all about today's novel jisme humne bahut sare I think perspectives ko discuss kiya, but hamara zyada focus
2: time nahi tha to hum usme details mein nahi ja sake because the novel is laden with so many layers, so many things that we can talk about. You can talk about Lahore,
1: so many incidents,
2: yeah, so many things, so many themes, which are loss of innocence ho, betrayal ho, brutality ho, ya phir partition ke time ka trauma ho, our feminist perspective se dekhe, post colonialism se dekhe, Foucault ki theory ke through dekhe, there are different lenses.
1: But this book is very good to read. اور اگین ہماری ریکمنڈیشن بھی اس کو پڑھیں, بیپسی دو پاسٹ اوے لاسٹ ایئر, تو بٹ ہر ورک ول آلویز ریمین اے ویری وڈ آلویز ریمین یو نو پلے اے ویری پیوٹل رول وین اٹ کمز ٹو ریڈنگ پاکستانی لٹریچر ان انگلش. سو دیٹ واز آل فرام آور سائڈ. تھینک یو سو مچ فار لسننگ ٹو اس. اللہ حافظ.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस, देन

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

लाहौर नंबर वन रेडियो स्टेशन एफ एम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया। Listen, learn, discover. With radio station FM 92.6, UCP ki duniya.

صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.

0: अगर कभी मेरी याद आए.
1: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6.
2: आप सुन रहे हैं University of Central Punjab FM 92.6.

0: Broadcasting from University Studios, where knowledge is empowerment. This is 92.6.
1: मौसीकी के सुर और ताल,
2: सुर और ताल,
1: ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार,
2: और तकरार,
1: सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
2: मस्ती के पास,
1: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, एफएम 92.6।
1: आप आजाद हैं, आजाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपने अपने इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

सुरौरताल सुरौरताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया
1: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP ki duniya.

www.musicbeat.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।